0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে নদী বা সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে যান তাদের উদ্দেশ্যে কোনো সতর্কবার্তা নেই বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা শুনছেন গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান, একটু পরে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ। গীতাঞ্জলির প্রচার তরঙ্গের ঘোষণা একটু পরেই।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে ফরহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
1: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज डमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के ससुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्री राम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

0: এর সঙ্গে আজকের মতো শেষ হলো ভজন। শিল্পী তুরবান বেড়া, আকাশবাণী কলকাতা সঞ্চয়িতা। একটু পরে শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম প্রবাচকঃ পুনীত ত্রিপাঠী। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां स्वनिवासे 20-26 इत्यस्य राष्ट्रमंडल क्रीडायाः पदक विजेतृभिः सह मेलनं कृतवान्। संवाद समये पदक विजेतारः प्रधानमंत्रिणा सह क्रीडायाः स्वानुभवान् निवेदितवन्तः। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदी अवदत् यत् तेषां एकैकः अपि असाधारण प्रदर्शनेन राष्ट्रं गौरवान्वितवान् तथा तेषां सफलता बहून् यूनः प्रेरयिष्यति। श्रीमोदी एकं दृश्य श्रव्य संदेशम् अपि प्रकाशितवान् अथ अवदत् यत् ये क्रीडकाः भविष्ये क्रीडासु भागं ग्रहीष्यन्ति ते प्रगतिं करिष्यन्ति। असौ नागरिकान् भारतस्य सदैव उत्साहवर्धनं कर्तुम् आहूतवान्।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: अवसरेस्मिन् युवकार्याणां क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया तथा युवकार्य खेल राज्यमंत्री रक्षा निखिल खडसे च उपस्थिते आस्ताम्। देशस्य सर्वेषु भागेषु हर घर तिरंगा इत्यभियानं देशभक्तेः राष्ट्रैकतायाः भारतस्य च समृद्ध सांस्कृतिक परम्परायाः प्रोत्साहनाय आयोज्यते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेता खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की
0: जय। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा आवास बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमों के बीच अंतर संचालन बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्यघर मुफ्त।

0: बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
4: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
5: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
3: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंह गाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक

0: पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुस जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेलमार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से

0: हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले दो दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
3: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुखपृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, JPSC के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी CBI जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मानसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक, मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक DGCA ने उड़ान चालक दल के 2 सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस पीपल टू जॉइन हर घर तिरंगा मूवमेंट एंड

9:11 मिनट है। स्टूडियो की घड़ी का समय आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। शुरू होने जा रहा है बातों और गीतों का कार्यक्रम जिसका नाम है रसथारा, और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा के साथ। फिर एक बार सिलसिला बातों और गीतों का चलेगा आज, यानी कि कार्यक्रम रसधारा जो कि बातों और गीतों का कार्यक्रम है, फिर एक बार हाजिर है आप सबके लिए एक नए विषय के साथ। जी हाँ, बात होगी एक नए टॉपिक को लेकर और सुमधुर गीत संगीत का साथ भी रहेगा इसी कार्यक्रम में। आखिर विषय क्या है, किस विषय को लेकर, किस टॉपिक को लेकर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो बातें तो होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की एक बहुत ही खूबसूरत से तराने के साथ। तो सबसे पहला गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में आप सभी सुनने वालों के लिए ट्यून रहेगा इस कार्यक्रम के साथ। चैनल आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल और कार्यक्रम चल रहा है रसधारा।

9:18 है शुरू की घड़ी का समय और संग है आप कार्यक्रम रसधारा के जो की बातों और गीतों का कार्यक्रम होता है। और सबसे पहला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, जिसमें संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। आनंद बख्शी के बोल हाथी मेरे साथी फिल्म से सुन रहे थे आप इस गीत को, जो कि कार्यक्रम का सबसे पहला गीत बना। और अब बारी आती है बताने की कि आज के इस कार्यक्रम में आखिर हमारा विषय क्या है, किस टॉपिक को लेकर हम करने वाले हैं बात, और आखिर चर्चा होगी किस विषय को लेकर। साथ ही साथ गीत संगीत का सिलसिला तो चलता ही रहेगा इस कार्यक्रम में। तो चलिए अगले गीत की ओर आगे बढ़ूं, उससे पहले बताऊं आपको कि आज के इस कार्यक्रम में ना हम साहसी महिलाओं के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, उन वीरांगनाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कमान संभाली। कमान अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है, जी हाँ, ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी महिलाएं भी हो सकती हैं, या फिर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी महिलाओं ने क्या कुछ नहीं किया, है ना। इसके अलावा व्यवसाय हो गया, या फिर कला के क्षेत्र में भी महिलाएं पीछे नहीं रही हैं। तो क्षेत्र चाहे कोई भी हो, बात हो रही है महिलाओं के साहस की और उनके साहस के जरिए उन्होंने किस तरीके से हर एक क्षेत्र में अपने कदम को जमाया और साथ ही साथ अपने साहस से अपने साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन किया। तो आज के इस कार्यक्रम में बात होंगी उन सभी वीरांगनाओं को लेकर, उन सभी साहसी महिलाओं को लेकर जिन्होंने कमान संभाली थी। तो इसी के साथ एक से बढ़कर एक फिल्मी गीत भी रहेंगे आप सभी के मनोरंजन के लिए। तो चलिए रुख करते हैं मुकेश की आवाज़ में, एक प्यारे से गीत को सुनवाऊंगी आपको। फिल्म अनाड़ी से लिया गया है ये गीत, जिसमें बोल है शैलेंद्र की, शंकर जय किशन के संगीत से सजा था ये गीत। तो चलिए मुकेश की आवाज़ में फिल्म अनाड़ी से सुनवाऊँ आपको ये गीत, और उसके बाद रुख करेंगे आज के विषय को लेकर।

9:25 संघ है आप शर्मिशा के और कार्यक्रम चल रहा है बातों और गीतों का जिसका नाम है रसधारा। और आज के इस कार्यक्रम में हम उन साहसी महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने कमान संभाली। भारतीय इतिहास, राजनीति, खेल और व्यापार के क्षेत्र में ऐसी कई महान भारतीय महिलाएं रही हैं जिन्होंने नेतृत्व कर कमान संभाली और देश का नाम रोशन किया। प्राचीन काल की वीरांगनाओं से लेकर आधुनिक समय की अग्रणी लीडर्स तक भारत की बेटियों ने हर क्षेत्र में अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के

साथ अगर महिलाओं के साहस को जोड़ा जाए तो हमारी महिला स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान आज भी सर्वोपरि है। 1780 के दशक से लेकर 1947 तक की अवधि तक कई सारी साहसी महिलाओं के नाम देश को आजाद कराने का श्रेय जाता है।

9:32 है चोरी की घड़ी का समय और जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि आज बातों और गीतों के कार्यक्रम रसधारा में हम उन साहसी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने कमान संभाली। क्षेत्र चाहे जो भी हो, इतिहास से जुड़ी महिलाएं हों या फिर व्यापार के क्षेत्र में हो या फिर खेल जगत हो, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन बात हो रही है महिलाओं के साहस की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अक्सर कुछ जाने माने नामों के माध्यम से बताया जाता है, लेकिन जिन महिलाओं ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, संगठन बनाए, प्रकाशन किए और कभी कभी अपनी जान भी गंवाई, वे देश के हर कोने से आई और उन्होंने हर तरह के प्रतिरोध में भाग लिया, जैसे सशस्त्र विद्रोह हो गया या फिर भूमिगत रेडियो। सविनय अवज्ञा और 1947 के बाद राष्ट्र निर्माण का शांत और कठिन काम। और इतिहास से जुड़ी महिलाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई का। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई के साहस के बारे में भला कौन नहीं जानता। इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर की अगर बात करें तो मराठा संग्राम की मालवा प्रांत की कमान संभालकर उन्होंने कुशल प्रशासन, न्याय और वास्तुकला की मिसाल पेश की थी। इसके अलावा रानी चिन्नम्मा की अगर बात करें तो कित्तूर की रानी, जिन्होंने अंग्रेजों की हड़प नीति के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके अलावा सरोजिनी नायडू की अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी और उसके बाद भी उन्होंने देश के अलग अलग कामों के साथ भी जुड़ी रहीं। ये तो थी इतिहास से जुड़ी कुछ साहसी महिलाओं की बात। और इसके अलावा राजनीतिक और शासन के क्षेत्र में जिन महिलाओं ने अपना योगदान दिया उनके बारे में भी बात करूंगी, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं एक प्यारे से फिल्मी गीत की ओर, जिसमें आवाज़ है लता मंगेशकर और मुकेश की। हरियाली और रास्ता फिल्म से सुनिएगा इस गीत को, जिसमें बोल हैं हसरत जयपुरी के। शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया ये गीत।

राजनीति और शासन के क्षेत्र में अगर महिलाओं का नाम लेने की बात आए तो सबसे पहले बात आती है इंदिरा गांधी की, भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने दृढ़ राजनीतिक फैसलों से देश की कमान संभाली। इसके अलावा देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति नाम प्रतिभा पाटिल। इसके अलावा ऐसे में भला द्रौपदी मुर्मू का नाम हम कैसे ना लें, भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति जिन्होंने देश के शीर्ष पद की कमान संभाली। इसके अलावा एक और जानी मानी महिला का नाम भी हम इस वक्त ले सकते हैं, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री और वर्तमान में देश की वित्त मंत्री के रूप में देश की आर्थिक कमान संभाल रही हैं, नाम निर्मला सीतारमण। जब साहसी महिलाओं की बात हो ही रही है जिन्होंने कमान संभाली, तो ये सारी महिलाएं जिन्होंने अपने साहस से, अपने दृढ़ संकल्प से देश को चलाया, जी हाँ, इतिहास गढ़ा जिन महिलाओं ने, इनके बारे में तो हम हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन ऐसे में क्या उन महिलाओं के बारे में बात करना ज़रूरी नहीं जो कि आपके पीछे आपके घर को संभाल रही है? जी हाँ, दो हथेलियाँ जिनमें जिम्मेदारी है आपके अपने घर को सहेज कर रखने की, संवार कर रखने की। जी हाँ, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके बिना शायद मैं और आप आज इस जगह ना होते, है ना। अगर थोड़ा सा सोच कर देखें तो ये जो महिलाएं हैं जो अपने घर को संभालती हैं, और किसी भी क्षेत्र में जिन महिलाओं के बारे में जिक्र मैं कर रही थी उनसे किसी भी क्षेत्र में कम दायित्व ये महिलाएं नहीं दिखाती हैं। जी हाँ, पूरे दिलो दिमाग से अपने घर को चलाने वाली, संवारने वाली ये महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम आंकी नहीं जा सकती। फिलहाल एक फिल्मी गीत और उसके बाद रुक

करूंगी, कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बात करूंगी, क्षेत्र खेल और सेना। जी हाँ, एक कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने मैदान और सुरक्षा की कमान संभाली, बात होगी। लेकिन फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा गीत जिसमें आवाज है किशोर कुमार की।

जिस तरह शाम का हो गुमा सुबह पे, जिस तरह शाम का हो गुमा जुल्फों में एक चेहरा कुछ

किशोर कुमार की आवाज़ में इस गीत को सुनते सुनते हम दोबारा रुख करते हैं अपने विषय की ओर और इस वक्त बात करेंगे मैदान और सुरक्षा की कमान संभालने वाली उन साहसी महिलाओं के बारे में जिक्र करूंगी। तो सबसे पहले बात आती है किरण बेदी की। जी हाँ, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने वाली पहली महिला जिन्होंने कानून व्यवस्था की कमान मजबूती से संभाली थी। इसके अलावा कैप्टन शिवा चौहान की बात भी करना चाहूंगी जिन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाले पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी थी। इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान के रूप में लंबे समय तक खेल की कमान संभाली और महिला क्रिकेट को एक नई पहचान दिलाई थी, नाम मिताली राज। इसके अलावा मैरी कॉम का नाम भला हम कैसे ना लें। जी हाँ, 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन जिन्होंने मुक्केबाजी के खेल में वैश्विक मंच पर भारत का नेतृत्व किया था। इसके अलावा व्यवसाय और विज्ञान के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपना नाम रोशन किया और ऐसे में कल्पना चावला का नाम भला हम कैसे नहीं ले सकते। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला जिन्होंने विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई राह दिखाई थी। और इस क्षेत्र में जी हाँ, जहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं के साहस की बात हो रही है, तो ऐसे में भला बॉलीवुड फिल्मों को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं ना। तो बॉलीवुड भी महिलाओं के लिए एक खास जगह तैयार की है और ऐसी बहुत सी फिल्में बनी हैं जिसमें फीमेल कैरेक्टर्स, यहाँ फेमस फीमेल कैरेक्टर्स हो गया या फिर खास महिलाओं को लेकर फिल्में बनाई गई हैं। तो बात होगी उन खास फीमेल कैरेक्टर्स और विशेष फिल्मों को लेकर जिसमें महिलाओं के, विशेष महिलाओं के बायोपिक को तैयार किया गया था। लेकिन चलिए इस वक्त रुख करें फिल्मी गीत की ओर और क्यों ना इस वक्त लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनवाऊँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा तराना।

बॉलीवुड में वास्तविक जीवन की जानी मानी महिलाओं पर आधारित बायोपिक की बात करें या फिर मजबूत काल्पनिक महिला किरदारों पर कई सारी बेहतरीन फिल्में बन चुकी हैं। अगर वास्तविक महिलाओं पर आधारित फिल्में यानी कि बायोपिक की अगर बात करें तो गुंजन सक्सेना, राजी छप्पाक, मैरी कॉम के अलावा दंगल, निर्जा, मणिकर्णिका जैसी फिल्में जो हैं बन चुकी हैं। हमने इन फिल्मों को देखा भी है और इसके अलावा मजबूत किरदार काल्पनिक महिला किरदार पर बनाई गई फिल्मों के बारे में अगर बात करें तो मदर इंडिया के अलावा कहानी एक और फिल्म बनी थी इंग्लिश विंग्लिश, जी हाँ, इसके अलावा थप्पड़ जैसी फिल्मों में मजबूत काल्पनिक महिला किरदार को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया था। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को करते हैं समाप्त। बातों और गीतों के कार्यक्रम रसधारा के साथ आप जुड़े हुए थे जिसमें बातें हो रही थी उन साहसी महिलाओं के बारे में, हम बात कर रहे थे जिन्होंने कमान संभाली थी क्षेत्र चाहे जो भी हो, और महिलाओं ने किसी एक क्षेत्र को नहीं छुआ हो शायद वो क्षेत्र बाकी नहीं रहा है। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को करते हैं समाप्त। मिलूंगी बहुत जल्द, समय रहेगा 10:02, और दोबारा मुझे सुनने के लिए आपने ट्यून करना है 107 FM रेनबो। लेकर आऊंगी कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप आप सभी सुनने वालों के लिए। तब तक के लिए ट्यून रहिएगा चैनल संचिता के साथ। सुन रहे थे बातों और गीतों के कार्यक्रम को रसधारा, जिसका नाम है, और आज मैं थी आपके साथ आपके रेडियो दोस्त शर्मिशा। फिर एक बार इसी जगह इसी चैनल पर दोबारा आपसे बात होगी, समय रहेगा ठीक 12 बजे, लेकर आऊंगी दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। तब तक के लिए एक और खूबसूरत तराना लता मंगेशकर भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में आप सभी सुनने वालों के लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। छात्रों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने कार्यक्रम पर अडिग हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई यह ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेष

0: विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को सशक्त बनाना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूसी उप प्रधानमंत्री मरार खुसनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसनुलिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। ईरान की संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य और खाड़ी की सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कार्य योजना की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। समिति के प्रवक्ता हसन कशकवी के हवाले से ईरान के स्थानीय मीडिया ने बताया कि इस योजना पर संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति में चर्चा हुई और बिना किसी विरोध के इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को 13 जुलाई को संसद में औपचारिक रूप से पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत में एशियाई शेरों की संख्या 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारतोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारतोलक महाराजन अरु मोंगपंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम का भार उठाया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Mann Ki Baat program on आकाशवाणी लास्ट मंथ, मिस्टर मोदी अर्ज पीपल टू होइस्ट ट्राइकलर एट होम्स।
4: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
3: The Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across the nation. In Maharashtra, the Har Ghar Tiranga campaign has begun with patriotic fervor. Tiranga rallies were organized in various districts of Maharashtra, including Bid, Thane and Buldhana. In Bihar, a grand Tiranga Yatra will be organized in Patna today under the Har Ghar Tiranga campaign. Several state ministers, legislators, officials and a large number of people will participate in the Tiranga Yatra. Manipur also joined the rest of the country in

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल। साथ ही साथ आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचिता टाइप करके इस चैनल को बराह रास्त सुन कर सकते हैं। तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाती, तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाती, जो वाबस्ता हुआ तुमसे वो अफसाने कहाँ जाती। जी हाँ सामिन कराम, हमारा दिल भी आपकी मोहब्बत के कई अफसानों से वाबस्ता है। यही वजह है कि रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर है आपका दोस्त आफताब आलम। सामिन कराम, इस वक्त हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के 10:15:45 हो रहे हैं। आप तमामी साबीन को आफताब आलम का पुरखुलूस आदम। तो आइए दोस्तों, अंजुमन की इब्तदा आईना से करते हैं। सामिन कराम, आज मादरे वतन के 34वें सदर जमहूरिया और 3रे नायब सदर जमहूरिया

0: या वीवी गिरी का यौमे वलादत है। इस मौके पर आकाशवाणी कोलकाता की जानिब से हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। सामिन कराम, वीवी गिरी की वलादत 10 अगस्त 1894 को मौजूदा उड़ीसा के ब्रह्मपुर के एक ब्राह्मण खानदान में हुई। उनके वालिद का नाम वीवी जोगिया पंतुलू था, जो कि एक मारूफ वकील थे। उनकी वालिदा का नाम सुभा दामा था, वो आजादी की तहरीक की एक बेहतरीन चुस्त थी। दोस्तों, वीवी गिरी ने इब्तदाई तालीम ब्रह्मपुर के खालीकोट कॉलेज से हासिल की। 1913 में कानून की तालीम हासिल करने की गरज से उन्होंने आयरलैंड का सफर किया। वहां उन्होंने डबलिन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। वहीं पर वो आयरिश तहरीक से मुतासिर हुए और फिर उनके अंदर मजदूरों के हकूक और उनके मसाइल के हल के हवाले से दिलचस्पियां पैदा हुई। दोस्तों, वीवी गिरी ने आजादी की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1930 की दहाई में वो मद्रास असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। 1952 में लोकसभा रुकन बने और उन्हें मरकजी वजीर यानी लेबर वजीर बनाया गया। वीवी गिरी उत्तर प्रदेश, केरला और कर्नाटक के गवर्नर भी बनाए गए। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक उन्होंने मुल्क के नायब सदर जमहूरिया के हैसियत से कौम की बेहतरीन खदमात अंजाम दी। सदर जमहूरिया जाकिर हुसैन की वफात के बाद मई 1969 से जुलाई 1969 तक कायम मकाम सदर की हैसियत से उन्होंने अपने कीमती खदमात अंजाम दी। इसके बाद 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक हिंदुस्तान के चौथे सदर जमहूरिया के अहदे पर फायज हुए। दोस्तों, वीवी गिरी की बेहतरीन खदमात के एतराफ में उन्हें 1975 में भारत रत्न एजाज से नवाजा गया। वो मजदूरों के हकूक, समाजी इंसाफ व मसावात और सनती ताल्लुकात के बेहतरीन हामी थे। दोस्तों, वतन अजीज के बेहतरीन सपूत की वफात जून 1980 को मद्रास में दिल का दौड़ना पड़ने से हुई। उस वक्त उनकी उम्र 85 साल की थी। सामिन कराम, अभी आप रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन में आईना के रूबरू थे। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर ना जाए कहीं।
1: यूं ही तुम मुझसे

वतन की आजादी की जुद्दोजहद की राह में हिंदुस्तानियों को कदम से कदम मिलकर मिलाकर चलाने का हौसला अता करते हुए पंडित बिरज नारायण चकबस्त अपने अशार के जरिया यूं पैगाम देते हैं। वो हिंदुओं से मुखातिब होते हुए लिखते हैं, भंवर में कौम का बेड़ा है हिंदू होशियार,

जिद्दोजहदी आज़ादी में मज़ीद मुस्तहकम पायदारी के साथ आगे बढ़ने का हौसला यूं अता किया है। वो लिखते हैं, दिखा दो जौहरे इस्लाम ए मुसलमानों, वक़ारे कौम गया कौम के निगहबानों, सुतूने मुल्क के हो कदर व कौमियत जानो, जफा वतन पे है फ़र्ज वफा को पहचानो, नबी के खल्क मरव्वत के वर्षादार हो तुम, नबी के खल्क मरव्वत के वर्षादार हो तुम, अरब की शान हमीयत की यादगार हो तुम। सामिन कराम, शायर मसलिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने वतन की अजमत व कदर से हिंदुस्तानियों को आश्कार करते हुए नज़्म हिमाला में अपने अशार यूं रकम करते हैं, ए फसीले किश्वरे हिंदोस्तां, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसबा, इम्तहा दीदे जाहिर में कोहिस्तां है तू, पासबा अपना है तू दीवार हिंदुस्तां है तू, आज़ादी की जद्दोजहद जैसे जैसे तेज होती गई, उर्दू शायरी भी वतन परस्तों को हुब्बे वतनी और वतन की असमत पर निसार होने के जज्बों को इस्तेकामत बख्शने में मुसाबकत से हमकनार होती गई, और उर्दू शायरी के इस हसीन तेवर की तर्जुबानी में बेबाक जुरातमंद और इनकलाबी शायर असरारुल हक मजाज की नज़्म इनकलाब खूब सादिक आती है। वो लिखते हैं, आ रहे हैं जंग के बादल मंडलाते हुए, आग दामन में छुपाए हुए खून बरसाते हुए, कोह सेहरा में जमीन से खून उबलेगा अभी, सरकशी की तुंद आधी दम बदम चढ़ती हुई, हर तरफ यलगार करती हर तरफ बढ़ती हुई, खून की होली की जंगल से हवाएं आएंगी, खून ही खून होगा निगाहें जिस तरफ भी जाएंगी। सामी कराम, मस्कुरा तमाम बातें व अशार इस बात के बेहतरीन गमाज हैं कि आज़ादी वतन के हवाले से उर्दू शोरा का किरदार नहायत रोशन व काबिल फ़ख्र रहा है। उन्होंने शेर व शुकन के तवस्सुत से वतन की आज़ादी की तहरीक को जिस नवयत की इस्तेकामत व फ़ायदारी अता की है, इसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता है, बल्कि इनके तस्करों से तारीख के कई अबवाब रोशन रहेंगे। सामिन कराम, अभी आप रोज़ाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन में मंजरनामा के तहत मुल्क की आज़ादी में उर्दू शोरा का किरदार के हवाले से हमारी गुफ्तगू समाप्त फरमा रहे थे। आइए सामिन कराम, समातों का जायका बदलते हुए सुनते हैं ये दिलकश नगमा।

सामिन कराम, अभी आप मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में फिल्म नगीना के नगमे से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। इस नगमे को कलमबंद किया था आनंद बख्शी ने, जबकि मौसीकी से आरास्ता किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सामिन कराम, अंजुमन के आइंदा हिस्से में पेश खिदमत है हफ्त रोजा प्रोग्राम तख्लीक़े कुदरत। दोस्तों, अल्लाह करीम ने इंसानों को तमाम मखलूकात में अशरफ बनाया है। इसकी खातिर रूए जमीन को चरिंद परिंद हैवानात नबातात व जमादात से आरास्ता किया है। साथ ही साथ माबूद हकीकी ने अपनी रहमत की शक्ल में इंसान की हिफ्ज़ बका सेहत व तंदुरुस्ती और इसके इलाज मुआवजा की खातिर कई मेवाजात मुख्तलिफ फल व जड़ी बूटियां भी पैदा फरमाई हैं। दोस्तों, कुदरत की इन्हीं तख्लीकात के ताल्लुक से हम हर सोमवार रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन में प्रोग्राम तख्लीक़े कुदरत के तहत गुफ्तगू करते हैं और आज हम हफ्त रोजा प्रोग्राम तख्लीक़े कुदरत में

ड्रैगन फ्रूट के हवाले से बातें करेंगे। सामिन कराम, ड्रैगन फ्रूट कुदरत की बेहतरीन तख्लीकात में से एक है, जो कि एक खूबसूरत मजेदार वो जायका मंद फल है। ये केक्टस खानदान से मुतल्लिका फल है। दोस्तों, ड्रैगन फल आमतौर पर गुलाबी या पीले रंग की जिल्द का फल होता है। इसके अंदर का गूदा सफेद या गुलाबी रंग का होता है, जिसमें छोटे काले बीज बड़े मकदार में पाए जाते हैं। ये जनूबी मशरकी एशिया, मैक्सिको और हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में पाया जाता है। सामिन कराम, ड्रैगन फल गिजाई एतबार से मुतअद्दिद फवायद से मालामाल फल है, जो कि दरमियानी साइज का होता है। इसमें तकरीबन 60 कैलोरीज पाई जाती है और ये एक कम चिकनाई वाला फल है। ड्रैगन फल में शामिल अहम गिजाई अज़ा के ताल्लुक से हम बातें करें तो इसमें विटामिन सी, फाइबर, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह पाए जाते हैं। सामिन कराम, ड्रैगन फ्रूट कुदरत की एक ऐसी प्यारी व बेहतरीन तख्लीक है, जो कि हमारी सेहत के हवाले से नहायत कारामद व मुफीद है। इसमें मौजूद फाइबर की ज्यादा मकदार कब्ज रोकती है, इससे आंतों की सेहत में बेहतरी आती है। इसके फाइबर कुदरती लेक्सिटिव का काम करते हैं और पाखाना नरम करते हैं। सामिन कराम, ये एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी वाफर मकदार में पाई जाती है, जिसके बायस ये फल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद फराहम करता है, मदाफिती खुलियात को फुआल वो बेहतर बनाता है और जिल्द को चमकदार वो सेहतमंद रखता है। दोस्तों, ड्रैगन फल कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फल है, जो कि खून में शुगर की कमी को मुस्तकम रखता है और हालिया तहकीक से ये बात सामने आई है कि इसमें इंसुलिन की हसासियत में बेहतरी लाने की सिफत भी पाई जाती है। दोस्तों, इस फल में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखता है, खुसूसी तौर पर एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखने में मदद करता है। दोस्तों, ड्रैगन फल के एंटीऑक्सीडेंट्स सोजिश कम करते हैं, फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद फराहम करते हैं, जो कैंसर, दिल की बीमारी और दिगर दायमी मसाइल को रोकने में भी मददगार साबित होते हैं। सामिन कराम, ड्रैगन में मौजूद विटामिन सी कोलेजिन की पैदावार को बढ़ाती है, जिससे जिल्द जवान रहता है। साथ ही साथ ये एंटी एजिंग असरात से भी मालामाल होता है। कुदरत की इस प्यारी तख्लीक यानी ड्रैगन फ्रूट की अहमियत का खुसूसी पहलू ये है कि ये गजाई कदरों से मालामाल होने के साथ साथ इक्तसादी और माहौलियाती अहमियतों से भी मुसय्यन है। इसे सुपर फूड माना जाता है क्योंकि ये कम कैलोरीज में ज़्यादा मकदार में गिजाई अज़ा फराहम करता है, जो कि वजन कम करने और डाइट्स में मुआविन व मददगार साबित होता है। दोस्तों, ज़राती एतबार से ये कम पानी और देखभाल की ज़रूरत वाला फल है, जो कि खुश्क इलाकों में उगाया जाता है। असर हाजिर में आलमी पैमाने पर इसकी मांग में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि ये लोगों की सेहत का खास ख्याल रखता है, यानी लोगों की सेहत पर अच्छे असरात मुरतब करता है और आलमी पैमाने पर इसकी मांग इसी वजह से बढ़ती जा रही है। तो सामिन कराम, अभी आप रोज़ाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन में हफ्त रोज़ा प्रोग्राम तख्लीक कुदरत के तहत ड्रैगन फ्रूट के हवाले से हमारी बातें समात फरमा रहे थे।

तो आइए दोस्तों अब समाप्त करते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये हसीन नगमा।

स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं ठीक 12। आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 297.6 मीटर्स अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। शुरू करते हैं दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि, और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिशा के साथ। और सुरभि कार्यक्रम के पहले पायदान की ओर रुख करेंगे जिसका नाम है चर्चा है। चर्चा है में आज का हमारा विषय है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। विश्व जैव ईंधन दिवस के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है और हर साल 10 अगस्त को ये दिन पालित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म और नवीकरणीय जैव ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इतिहास की अगर बात करें तो ये दिन जर्मन इंजीनियर और डीजल इंजन के आविष्कारक सर रुडोल्फ डीजल के ऐतिहासिक प्रयास की याद दिलाता है। उन्होंने 9 अगस्त 1893 को पहली बार मूंगफली के तेल से यांत्रिक इंजन को सफलतापूर्वक चलाया था। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पहली बार अगस्त 2015 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। मुख्य महत्वों की अगर बात करें तो प्रदूषण नियंत्रण किया जाता है, जैव ईंधन पर्यावरण के अनुकूल होता है और इनसे हवा में कम हानिकारक गैसें फैलती हैं। इसके अलावा ये तेल और कोयले जैसे सीमित संसाधनों पर हमारी पकड़ को कम करता है। फसल के अवशेषों और कचरे से ईंधन तैयार करने को बढ़ावा मिलता है और इसके अलावा जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ होता है। चर्चा है आज यहीं तक, बात हो रही थी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे को लेकर। रुख करेंगे फिल्मी गीत की ओर और फिलहाल उदित नारायण और विभा शर्मा की आवाज़ में ये फिल्मी गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।
2: यहाँ

12:10 मिनट है। छोड़िए घड़ी का समय, आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल आपने ट्यून किया है और सुन रहे हैं बातों और गीतों के कार्यक्रम के अलावा दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं जिसका नाम है सुरभि। और सुरभि कार्यक्रम के अगले पायदान की ओर रुख करते हैं जिसका नाम है पहल। पहल में आज का हमारा विषय है दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना। दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना गोवा सरकार द्वारा 30 मई 2016 को शुरू की गई एक राज्य प्रायोजित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गोवा के दीर्घकालिक निवासियों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करना। मुख्य विशेषता और लाभ की अगर बात करें तो परिवार के आकार के आधार पर बीमा कवरेज दिया जाता है। इसके अलावा सूचीबद्ध एम्पैनल्ड अस्पतालों में इलाज के दौरान नकद पैसे देने की जरूरत नहीं होती। गंभीर बीमारियों और सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित पैकेज के तहत वित्तीय सहायता मिलती है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी जीवन शैली से जुड़ी पुरानी बीमारियों के लिए हर साल 15,000 रुपये तक का खर्च कवर दिया जाता है। अब पात्रता की अगर बात करें तो आवेदक कम से कम 5 वर्षों से गोवा का निवासी होना चाहिए। ये योजना गोवा के सरकारी कर्मचारियों, उनके परिवार और केंद्रीय कर्मचारियों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी नागरिकों के लिए खुली है। आवश्यक दस्तावेज की अगर बात करें तो निवास प्रमाण पत्र जिसमें 5 वर्ष का प्रमाण दिया जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार के सदस्यों के पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है। इसके अलावा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना कार्ड की जरूरत भी होती है। पहल आज यहीं तक। बात हो रही थी दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना को लेकर। फिर एक बार रुख करेंगे फिल्मी गीत की ओर।

12:16 टेस्ट चुरी की घड़ी का समय यानी कि करना होगा आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त। लेकिन जाने से पहले अभिजीत और अलके याग्निक की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत सा तराना आप सभी श्रोताओं के लिए छोड़े जाना चाहती हूँ। इस गीत को सुनते सुनते शर्मिशा को दीजिए गई इजाज़त आज के लिए समाप्त करना चाहूँगी इस कार्यक्रम को, और दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी चैनल पर फिर कभी। तब तक के लिए ट्यून रहेगा आकाशवाणी कोलकाता के संचेता चैनल के साथ और सुनते रहेगा ये तराना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता में एक रूपता तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता बढ़ाने, स्वतंत्रता पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे, लेकिन सदन में लगातार नारेबाजी के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च किया। सरकार का दावा है कि विद्यार्थियों की 98% मांगे स्वीकार कर ली गई है। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी विधानसभा के पास पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और नई विधानसभा की ओर बढ़ते रहे। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 विद्यार्थी अब भी अनिश्चितकालीन अनशन है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में

0: to allow Home Minister Amit Shah to make his statement and respond to issues raised by members without any disruption. Four bills, including Tribunals Reforms Bill 2026, introduced in Lok Sabha. Bill aims to improve transparency and efficiency in functioning of tribunals. Protesting students begin their march towards Jharkhand Assembly over alleged irregularities in recruitment examinations. Har Ghar Tiranga movement gains momentum as Tiranga rallies organized across the nation. Over 10 lakh people evacuated as Typhoon Dolphin batters parts of eastern China. World Lion Day being celebrated today. Prime Minister Narendra Modi says India scripted successful conservation journey from 523 lions to 891 in last 10 years. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, तीन अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
2: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
3: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एकरूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल

0: दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
1: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
0: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
2: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सब का राइट है, सत्याग्रह हम सब की ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
0: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत

0: आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
3: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार।

0: एक बार फिर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कोलकाता অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টসে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে ঝাপতালে তবলা পরিবেশন করবেন সমিত ভট্টাচার্য, হারমোনিয়ামে হিরণময় মিত্র।

0: আকাশবাণী কলকাতা সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হল। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় বিকেল 4:59 হয়ে 47 সেকেন্ড। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টসে। এখন সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মাই প্রশান্ত কুমার। সংসদ নে ব্যাংক কার বহিঃসাক্ষ্য বিধেয়ক 2026 পারিত কর দিয়া হ্যায়। ইস বিধেয়ক কো আজ রাজ্যসভা নে ভি মঞ্জুরি দে দি। লোকসভা ইসে পহলে হি পারিত কর চুকি হ্যায়। ইসকা উদ্দেশ্য বর্তমান ব্যাংকিং প্রণালী কি আবশ্যকতাও কো পুরা করনে কে লিয়ে কানুনি ঢাঁচে কা আধুনিকীকরণ করনা হ্যায়। বিধেয়ক মে ব্যাংক কার বহি সে সম্বন্ধিত সাক্ষ্যো কে লিয়ে এক কানুন বনানে অর ইসে সমকালীন ডিজিটাল ব্যাংকিং প্রথাও কে অনুরূপ বনানে কা প্রাবধান হ্যায়। বিধেয়ক পর চর্চা কা জবাব দেতে হুয়ে বিত্তমন্ত্রী सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंक कार बहिस्साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे सुधारों के अंतर्गत लाया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि नागरिकों को तथ्यों को जानने का अधिकार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष से सदन में अनुशासन बनाए रखने और कार्यवाही में बाधा न डालने का आग्रह किया।
2: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
3: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, अब सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे

मीडियम में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 5:21:23 हुए हैं। वक्त हो रहा है कार्यक्रम उर्वशी का। उर्वशी के झरोखा में आज हम आपको बताएंगे कजरी यूपी के बारे में। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त रोशन मुरारका। कजरी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है। विशेष रूप से सावन और भादों के महीनों में कजरी गीतों का गायन किया जाता है। वर्षा ऋतु, झूले, विरह, प्रेम, प्रकृति और लोक जीवन की भावनाएं कजरी के प्रमुख विषय हैं। कजरी शब्द का संबंध सामान्यतः काजल जैसी गहरी घटाओं से जोड़ा जाता है। सावन में जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं, वर्षा की फुहारें पड़ती हैं और चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, तब ग्रामीण क्षेत्रों में कजरी गीतों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। कजरी केवल एक गीत नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति, सामाजिक जीवन और भावनात्मक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज और पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में कजरी की समृद्ध परंपरा रही है। विशेष रूप से मिर्जापुर की कजरी को अपनी विशेष शैली के लिए जाना जाता है। सावन के अवसर पर महिलाएं समूह में झूला झूलते हुए कजरी गाती हैं। इन गीतों में मायके की याद, प्रिय से बिछो, वर्षा ऋतु की सुंदरता और पारिवारिक संबंधों की भावनाएं व्यक्त होती हैं। कजरी में जीवन के अनेक रंग दिखाई देते हैं। वर्षा और प्रकृति, प्रेम और विरह, सावन और झूला, मायके की याद, पति या प्रियजन से बिछो। कजरी की खासियत यह है कि इसमें साधारण ग्रामीण जीवन की भावनाओं को बहुत सहज और मधुर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। सावन और कजरी का संबंध बहुत गहरा है। सावन आते ही गांव में पेड़ों पर झूले पड़ते हैं, महिलाएं और युवतियां समूह में झूला झूलती हैं और कजरी गाती हैं। वर्षा की रिमझिम, हरियाली और ठंडी हवा इन गीतों के वातावरण को सुंदर बना देती है। कजरी में सावन केवल मौसम नहीं बल्कि भावनाओं का उत्सव बन जाता है। कजरी लोकगीतों में महिलाओं की भावनाओं की विशेष अभिव्यक्ति मिलती है। विवाह के बाद अपने मायके से दूर रहने वाली स्त्रियां सावन के समय माता पिता और भाई बहनों को याद करती हैं। कई कजरियों में बहन अपने भाई से सावन में मायके ले जाने की इच्छा व्यक्त करती हैं। कहीं प्रिय के दूर होने का दुख है तो कहीं मिलन की खुशी। इस प्रकार कजरी लोक समाज में महिलाओं के अनुभवों और भावनाओं को अभिव्यक्ति देने का महत्वपूर्ण माध्यम रही है। कजरी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी मधुर लय और भावपूर्ण गायन शैली है। इसे पारंपरिक रूप से लोकवाद्यों के साथ गाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसकी गायन शैली और प्रस्तुति में अंतर देखने को मिलता है। कजरी लोकगीत होने के साथ साथ

और उपशास्त्रीय संगीत के मंचों तक भी पहुंची है। अनेक प्रसिद्ध लोक एवं शास्त्रीय गायकों ने कजरी को लोकप्रिय बनाया है। मिर्जापुर की कजरी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ कजरी से जुड़े आयोजन और लोक परंपराएं लंबे समय से चली आ रही है। आज मनोरंजन के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध होने के बावजूद कजरी की लोकप्रियता बनी हुई है। लोक कलाकार, सांस्कृतिक संस्थाएं, विद्यालय और विश्वविद्यालय कजरी के संरक्षण और प्रचार प्रसार में योगदान दे रहे हैं। कजरी उत्तर प्रदेश की जीवंत लोक सांस्कृतिक विरासत है। इसमें सावन की हरियाली, वर्षा की रिमझिम, प्रेम की मिठास, विरह की पीड़ा और ग्रामीण जीवन की सहजता एक साथ दिखाई देती है। कजरी केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही लोक स्मृतियों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इसलिए कजरी जैसी लोक परंपराओं का संरक्षण करना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। सावन की घटा, झूले की डोर और लोक मन की मधुर पुकार, यही है कजरी की पहचान। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के कजरी के बारे में। कजरी यानी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा।

आई सुनते अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बरसात की एक रात से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देववर्मन।

एक कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में। फिल्म है आप मुझे अच्छे लगने लगे। गीतकार हैं इब्राहिम इश्क और संगीतकार राजेश रोशन।

आइए कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए और आपके दोस्त रोशन मिरा का कोई है आगे दीजिए। आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म कुछ कुछ होता है से। गायक कलाकार है कुमार सानू और अलका याग्निक। गीत लिखा है समीर ने और संगीतकार जतिन ललित। गीत सुनते रहिए और गीत सुनते सुनते आपके दोस्त रोशन मिराका को आज्ञा दीजिए।

0: 11:05 news in English, 11:10 time for Hindi film songs, and at 12 a.m. weather report followed by the program summary. Well, those were the announcements regarding the program highlights. Now, please stand by for the news in Hindi to be relayed from Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बहिस्साक्ष अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
2: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
3: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ है उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा तब तक हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से नहीं खोला जाएगा। श्री बघाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण हुर्मुज जलडमरू मध्य को बंद किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।

मीडियम में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचेता चैनल है। स्टूडियो घड़ी में 6:10:34 हुए हैं। वक्त हो रहा है हिंदी वार्ता का। आज का विषय है जैव ईंधन, हरित ऊर्जा और भारत के बढ़ते कदम। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त रोशन मुरारका। आज पूरी दुनिया ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। आधुनिक जीवन, उद्योग, परिवहन और कृषि सभी के लिए ऊर्जा आवश्यक है। लंबे समय तक ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता रही है। इन संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। ऐसे समय में जैव ईंधन एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में सामने आया है। जैव ईंधन पौधों, कृषि अवशेषों, जैविक कचरे और अन्य जैविक पदार्थों से तैयार किए जाते हैं। यह न केवल ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराते हैं बल्कि कृषि अवशेषों और जैविक कचरे के बेहतर उपयोग का अवसर भी प्रदान करते हैं।

भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश के लिए जैव ईंधन का महत्व और भी अधिक है। यह ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में योगदान दे सकता है।

जैविक स्रोतों से प्राप्त या तैयार किए जाने वाले ईंधन को सामान्य रूप से जैव ईंधन कहा जाता है। इसके लिए गन्ना, मक्का, वनस्पति तेल, कृषि अवशेष, गोबर, खाद्य अवशिष्ट और अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। बायो एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य जैविक स्रोतों से बनाया जाता है। बायोडीजल वनस्पति तेलों और कुछ अन्य जैविक स्रोतों से तैयार किया जाता है। बायोगैस जैविक कचरे और पशु अपशिष्ट के अपघटन से प्राप्त गैस। कंप्रेस्ड बायोगैस शुद्ध किए गए बायोगैस का संपीड़ित रूप। सेकेंड जनरेशन या एडवांस बायोफ्यूल कृषि अवशेषों और गैर खाद्य जैविक पदार्थों से तैयार किए जाने वाले उन्नत ईंधन।

भारत की ऊर्जा जरूरत लगातार बढ़ रही है। परिवहन क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल की बड़ी भूमिका है तथा देश को अपनी तेल आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आयात करना पड़ता है। इसलिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को विकसित करना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैव ईंधन का विस्तार होने से पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती और स्थानीय स्तर पर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। हर वर्ष खेतों से बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष निकलते हैं। यदि इनका उचित उपयोग न किया जाए तो कई स्थानों पर किसान इन्हें जला देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या पैदा होती है।

जैव ईंधन उद्योग कृषि अवशेषों को उपयोगी संसाधन में बदलने का अवसर देता है। धान का भूसा, गन्ने के अवशेष, मक्का के अवशेष और अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग उन्नत जैव ईंधन बनाने में किया जा सकता है। इसे किसानों के कृषि अवशेषों से अतिरिक्त आय प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है और कचरे को संसाधन में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। भारत में जैव ईंधन के क्षेत्र में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल एक महत्वपूर्ण पहल है। पेट्रोल में निर्धारित मात्रा में इथेनॉल मिलाने से पेट्रोलियम ईंधन की आवश्यकता को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इथेनॉल उत्पादन में गन्ने और अन्य उपयुक्त कृषि स्रोतों का उपयोग होता है। इससे किसानों और चीनी उद्योग के लिए भी अतिरिक्त आर्थिक अवसर पैदा हो सकते हैं।

भारत में पशुधन और कृषि से बड़ी मात्रा में जैविक अवशिष्ट उत्पन्न होता है। इस अवशिष्ट का वैज्ञानिक उपयोग करके बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार की जा सकती है। सीबीजी को परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे एक ओर जैविक कचरे का बेहतर प्रबंधन होता है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर ऊर्जा का उत्पादन संभव होता है। इस प्रक्रिया से निकलने वाले जैविक अवशेषों का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार जैव ईंधन कचरे से ऊर्जा और ऊर्जा से आर्थिक अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैव ईंधन का एक प्रमुख उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना और कम कार्बन ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ना है। जब जैविक संसाधनों का टिकाऊ तरीके से उपयोग किया जाता है तो ऊर्जा प्रणाली के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान दे सकते हैं।

जैव ईंधन की सफलता के लिए सतत उत्पादन और वैज्ञानिक तकनीक आवश्यक है। जैव ईंधन उद्योग ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकता है। कृषि अवशेषों का संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण, जैव ईंधन संयंत्रों का संचालन और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न हो सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम आयात पर अत्यधिक निर्भरता देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में होने वाले बदलावों से प्रभावित कर सकती है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैव संसाधनों से ईंधन का उत्पादन करने से ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाई जा सकती है। इसे आयात पर निर्भरता को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में सहायता मिल सकती है। इसी कारण जैव ईंधन आत्मनिर्भर भारत की व्यापक सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। आज दुनिया में सर्कुलर इकोनॉमी यानी परिपत्र अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और कचरे को न्यूनतम करना है। यदि जैव संसाधनों का अस्थिर या अत्यधिक उपयोग किया जाए तो भूमि, जल और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत का लक्ष्य केवल जैव ईंधन का उत्पादन बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी पूरी व्यवस्था विकसित करना होना चाहिए जिसमें किसान, उद्योग, उपभोक्ता और पर्यावरण सभी को लाभ मिले। भारत की युवा आबादी जैव ईंधन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। युवाओं को विज्ञान, इंजीनियरिंग, कृषि तकनीक और उद्यमिता के माध्यम से इस क्षेत्र में नया समाधान विकसित करना चाहिए। भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था केवल एक स्रोत पर निर्भर नहीं होगी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, हरित हाइड्रोजन, बैटरी और जैव ईंधन, इन सभी का संतुलित उपयोग भारत को अधिक टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था की ओर ले जा सकता है। जैव ईंधन केवल पेट्रोल और डीजल का विकल्प नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, कृषि, पर्यावरण, रोजगार और ग्रामीण विकास को जोड़ने वाली एक व्यापक संभावना है। अंततः कहा जा सकता है कि कचरे को संसाधन बनाएं, जैव ईंधन को अपनाएं, हरित ऊर्जा की राह पर चलकर आत्मनिर्भर भारत बनाएं। अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता, विषय था हरित ऊर्जा और भारत के बढ़ते कदम। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में।

दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं। वक्त हो रहा है कार्यक्रम गुलगुलसन का। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। आइए सुनते हैं गुलगुलसन कार्यक्रम में गजल चित्रा और हरिहरन की आवाज़ में।

इस गजल के साथ ही गुलगुल सुन कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अब आपके दोस्त रोशन मीणा का को आज्ञा दीजिए अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस

0: विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्त और प्रशासन तथा कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ है उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत के निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और herghartiranga.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। और खेलों में FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। यह प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning.

मीडियम में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचेता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 7:30:36 हो रहे हैं। वक्त हो रहा है पत्रिका कार्यक्रम दर्पण का। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रोशन मुरारका।

सबसे पहले एक नजर विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य जैव ईंधन के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना और जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल डीजल और कोयला के स्थान पर स्वच्छ एवं नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना है। जैव ईंधन ऐसे ईंधन है जो पौधों कृषि अवशेषों जैविक कचरे और अन्य जैविक पदार्थों से बनाए जाते हैं। प्रमुख जैव ईंधनों में बायोइथेनॉल बायोडीजल बायोगैस और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल शामिल है। भारत सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बायोडीजल कंप्रेस्ड बायोगैस और अन्य वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा दे रही है। इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना किसानों की आय के लिए नए अवसर पैदा करना और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना है। स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं जैव ईंधन बढ़ाएं हरित और आत्मनिर्भर भारत बनाएं। ये थी एक नजर।

और अब हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य सरिता, जो साहित्य और पुस्तक समीक्षा पर आधारित कार्यक्रम होता है। आज हम बातें करेंगे गोपाल सिंह नेपाली के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास में अनेक ऐसे कवि हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकृति प्रेम, देशभक्ति, मानवीय संवेदना और सामाजिक चेतना को अभिव्यक्ति दी। गोपाल सिंह नेपाली हिंदी के ऐसे ही लोकप्रिय कवि और गीतकार थे जिनकी रचनाओं में भावनात्मक कोमलता के साथ साथ राष्ट्रप्रेम और जनजागरण की भावना भी दिखाई देती है। उन्होंने हिंदी कविता और फिल्मी गीतों के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनकी भाषा सरल, मधुर, संगीतात्मक और आम पाठकों के हृदय को छू लेने वाली थी। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में हुआ था। उनका मूल नाम गोपाल सिंह था और साहित्य जगत में वे गोपाल सिंह नेपाली के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका बचपन ऐसे वातावरण में बीता जहां प्रकृति, ग्रामीण जीवन और भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव था। प्रारंभ से ही उनमें कविता और साहित्य के प्रति रुचि दिखाई देने लगी थी। उन्होंने अपने अनुभवों और संवेदनाओं को कविता के माध्यम से व्यक्त करना शुरू किया। उनके व्यक्तित्व में सरलता, संवेदनशीलता, आत्मसम्मान और देशप्रेम एक प्रमुख गुण थे। वे केवल कल्पना के कवि नहीं थे बल्कि अपने समय की सामाजिक और राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति भी सजग रहते थे। उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी गीतात्मकता। उनके शब्दों में स्वाभाविक संगीत था। यही कारण है कि उनकी कविताएं पढ़ने के साथ साथ सुनने में भी अत्यंत मधुर लगती हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में आम आदमी की भावनाओं और भारतीय जीवन के विभिन्न रंगों को स्थान दिया। उनकी कविता में कहीं प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है तो कहीं देश के प्रति गहरा प्रेम और राष्ट्र को जागृत करने का आह्वान सुनाई देता है। उनके साहित्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका राष्ट्रप्रेम था। वे देश की स्वतंत्रता, एकता और सम्मान के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। विशेष रूप से 1962 के भारत चीन युद्ध के समय उनकी देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करने का काम किया। उन्होंने अपनी कविताओं और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से देशवासियों में उत्साह और आत्मविश्वास जगाने का प्रयास किया। उनकी राष्ट्रवादी कविताएं केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं थी बल्कि उनमें देश के प्रति जिम्मेदारी और नागरिक कर्तव्य का संदेश भी मिलता है। गोपाल सिंह नेपाली की कविताओं में प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। पहाड़, नदियां, फूल, बादल, बसंत, हरियाली जैसे प्राकृतिक तत्व उनकी काव्य कल्पना को समृद्ध करते हैं। गोपाल सिंह नेपाली ने कविता और गीत के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण रचनाएं दी। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों में उमंग, पंछी, रागिनी, नीलिमा, नवीन और हिमालय ने पुकारा का उल्लेख किया जाता है। गोपाल सिंह नेपाली ने हिंदी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी सरल, मधुर और भावपूर्ण भाषा के कारण लोकप्रियता हासिल की। उनके फिल्मी गीतों में प्रेम, विरह, प्रकृति और जीवन के भावों को सहज शब्दों में प्रस्तुत किया गया। गोपाल सिंह नेपाली ने साहित्य के साथ पत्रकारिता में भी काम किया। उन्होंने पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों को व्यापक समाज तक पहुंचाया। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे

भी गीतकार और पत्रकार होने के साथ साथ एक जागरूक राष्ट्रवादी भी थे। गोपाल सिंह नेपाली का निधन 17 अप्रैल 1963 को हुआ। उनका जीवन बहुत लंबा नहीं था, लेकिन कम समय में उन्होंने हिंदी कविता, गीत और राष्ट्रवादी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका निधन हिंदी साहित्य के लिए एक बड़ी क्षति था। हालांकि वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताएं और गीत आज भी हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति चेतना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक पुस्तक समीक्षा पर आधारित कार्यक्रम साहित्य संहिता। आज हम बातें कर रहे थे गोपाल सिंह नेपाली के बारे में। और आइए सुनते हैं हर घर तिरंगा पर एक कविता आदिल अहमद द्वारा। यह कार्यक्रम पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: है अब शोक हवाएं और मन में गंगा, तभी तो लहराता है हर ओर हर घर तिरंगा। हरी पत्तियों पे उजली बूंदे, चंपई किरने बिखेरती रंग बिरंगा। तभी तो लहराता है हर ओर हर घर तिरंगा। सीमाओं पे चट्टानों सी है फौज हमारी, सीमाओं पे चट्टानों सी है फौज हमारी। दिल में लिए मर मिटने का जज्बा, तभी तो लहराता है हर ओर हर घर तिरंगा। युवाओं का देश भारत, युवाओं का देश भारत। युवा देश से लेता नहीं कोई पंगा, तभी तो लहराता है हर ओर हर घर तिरंगा। हर समाज हर घर में पल रही हैं लक्ष्मीबाई, सरोजनी और भीकाजी कामा। तभी तो लहराता है हर ओर हर घर तिरंगा। ज्ञान विज्ञान का ज्योत है कुछ ऐसा, ज्ञान विज्ञान का ज्योत है कुछ ऐसा। पूरे विश्व में बजता है डंका, तभी तो लहराता है हर ओर हर घर तिरंगा। देखो वीर जवानों सुन लो, देखो वीर जवानों सुन लो, आजादी की तान ये सुन लो। अब न भरम ये टूटने पाए, अब न भरम ये टूटने पाए। कुर्बानी का वो दौर था महंगा, आगे भी बस लहराता रहे, आगे भी बस लहराता रहे हर ओर हर घर तिरंगा।
0: अभी आप सुन रहे थे कविता आदिल अहमद द्वारा हर घर तिरंगा। और अब चलते चलते

आइए चलते चलते मैं अब एक पुरानी फिल्म का गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है आनंद आश्रम। गायक कलाकार आशा भोसले और किशोर कुमार। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत श्यामल मित्रा का है।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए और आप आपके दोस्त रोशन राठौर को यही कार्यक्रम दर्पण समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आखिरी गीत है लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। गीत लिखा है हर्षद जयपुरी ने और संगीतकार है रविंद्र जैन। गीत सुनते रहिए और आपके दोस्त को यही आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: बीते।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष

से संसद चलने की देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की

0: 26 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do.
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है।
5: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर

0: संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
1: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ है उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
2: फिर से मैं चैलेंज देता हूँ राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खिंगांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
4: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है, जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा

0: चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नेते निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing ecosystem, attract investment and create jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures UPI transactions to remain free. Legislation granting legal recognition to digital banking records as evidence also gets nod from Parliament. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges opposition to allow Lok Sabha to function for Home Minister Amit Shah's statement on student protest-related issues. Protests intensify in Jharkhand over recruitment exam irregularities after clashes between students and police during Assembly March in Ranchi. 80th Independence Day celebrations to showcase Yuva Shakti and its contribution to Viksit Bharat by 2047. National song Vande Mataram to be sung from the ramparts of Red Fort for the first time. Heavy rainfall forecast for Himachal Pradesh and East Rajasthan tomorrow. And FIH Hockey World Cup 2026 begins later this week with new format as quarterfinals are scrapped. India drawn in the men's and women's Pool D. And now the news in detail. Parliament has passed the tax

नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और हर इंसान की चाहत रहती है कि हंसी खुशी ये सफर यूं ही चलता रहे, लेकिन प्रकृति का ये विधान है कि एक ना एक दिन ये सफर भी पूरा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब ये सफर खत्म होगा तब क्या हमारे पीछे ऐसा कुछ रह सकता है जो किसी और हम सफर के जीवन के बुझते हुए चराग को रोशन कर दे। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं अंग दान की। एक ऐसा दान जो इंसान को उसकी मृत्यु के बाद भी अमर बना सकता है। भारत में हर साल लाखों लोग दोस्तों सिर्फ इसलिए समय से पहले दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कोई अंग जैसे किडनी, लिवर या हृदय नहीं मिल पाया। अस्पतालों के गलियारों में अपनों की जिंदगी की याचना करते परिवारों की आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद में पथरा जाती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक जिंदगी खत्म हो रही होती है और दूसरी तरफ उस पर निर्भर कई और जिंदगियां भी किसी एक अंग के न मिल पाने की वजह से कठिनाई झेलती हैं। अंगदान इसी समस्या के

0: निवारण का एक रास्ता है, लेकिन इसे लेकर मौजूद हैं बहुत सी भ्रांतियां भी, जिनकी वजह से बहुत से इच्छुक लोग भी परोपकार के इस महान कार्य को या तो कर नहीं पाते या हिचकिचाते हैं। और ऐसी ही तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज पब्लिक स्पीक में हमने विषय तय किया है, अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से पधारे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
1: नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आम तौर पर जैसा कि लोगों के जहन में रहता है कि अंगदान जो है वो है तो एक बहुत ही अच्छा एक नेक कार्य है, लेकिन यदि हमारे माता पिता में से या संबंधी में से कोई एक ऐसी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर गए हैं तो जहन में ये आता है कि अब यदि हम वो अंगदान के लिए तैयार हो भी जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि शायद कितने समय में हम संपर्क करें और क्या हमें उनका जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, वो इस अवस्था में हमें मिल पाएगा कि उसे देखकर दिल को किसी तरह की ठोस ठेस ना पहुंचे और क्षत विक्षत वो स्थिति में ना हो, जैसे कि आम तौर पर लोग सोचते हैं और इस वजह से फिर वो हिचकिचा जाते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि कितना समय जो है वो आदर्श माना गया है अंगदान के लिए मृत्यु के बाद।
1: मृत्यु के बाद अंगदान के लिए आमतौर पर एक आईसीयू में जब मरीज दाखिल होता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ये जांच द्वारा कि उसके मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी है तो ब्रेन डेड हो उसको घोषित किया जाता है। और इसमें एक बार नहीं, दो बार परीक्षण किए जाते हैं और चार डॉक्टरों की टीम इसको सर्टिफाई करती है। तो उसके बाद ये ब्रेन स्टेम डेड डिक्लेयर करने के बाद में तो उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, सपोर्ट सिस्टम को हटाते नहीं हैं। अगर परिवार अंगदान की हामी भरता है तो उसके सारे ऑर्गेन्स जो डोनेट हो सकते हैं और वो दूसरों की जिंदगियां बचा सकते हैं, उसके साथ साथ उसके टिश्यूज भी डोनेट हो सकते हैं। तो टिश्यूज जो होते हैं वो इवन नेचुरल डेथ जो होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है या घर में मृत्यु हो जाती है या आईसीयू में नहीं होती, किसी वार्ड में मृत्यु हो जाती है, तो उनमें टिश्यूज जैसे कॉर्निया, स्किन है, बोन्स हैं, वो भी डोनेट हो सकते हैं। और लेकिन अंगदान आमतौर पर जब आईसीयू में मरीज की मृत्यु होती है तो उसमें 8 लोगों तक की जिंदगी बच सकती है, जिसमें 2 किडनीज हैं, लिवर है, हार्ट है, 2 लंग्स हैं, फेफड़े जो बोलते हैं, और इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज भी दान हो सकते हैं। तो इसमें सभी को आगे आना चाहिए, ये एक नेक मुहिम है और सभी को इससे जुड़ना चाहिए।
0: शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक श्रोता हिसार हरियाणा से, राजेंद्र।
2: नमस्कार जी मनीष जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका?
2: मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाथ या पैर कोई डैमेज हो जाए तो दोबारा से लगवाना चाहे तो क्या लग सकता है, और दूसरा है ये आंख दान की हुई किन लोगों को नहीं लग सकती, ये जानना था। नमस्कार जी।
0: जी, तो आपने दो तरह के प्रश्न किए, एक तो खास तौर पर नेत्र से संबंधित है तो उसका जवाब आपको देंगे भारतीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जो विशेषज्ञ हैं, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा, और दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार। तो मैं पहले आपसे ये निवेदन करता हूं डॉक्टर अनिल कि इनकी जो ये शंका है उसका निवारण आप करें।
1: बिल्कुल, हाथ का भी दान होता है और हाथ भी प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, और हमारा देश पूरे दुनिया में हार्ट हैंड ट्रांसप्लांट के मामले में, जो हाथ का ट्रांसप्लांट है, जैसे किसी के हाथ कट गए हैं किसी दुर्घटना में, कहीं मशीन में कट गए या, तो उस तरह के सिचुएशन में भी हाथ का दान करके भी हम उनका हैंड ट्रांसप्लांट करके, और वो भी 6 घंटे के अंदर ही हमें मृत्यु के उनका हाथ का दान कर देना होता है, तो वो आराम से उनको लगा करके, और 80 से ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे देश में हैंड ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, और ये दुनिया में आंकड़ा नंबर 1 पर है भारत का जो एंड

0: ट्रांसप्लांट का आंकड़ा है।
1: जहाँ तक नेत्र का सवाल है, आपका सवाल ये था कि किन लोगों को नेत्रदान करने के बाद भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेत्रदान का मतलब यह होता है कि जो कॉर्निया से रिलेटेड, जो आगे जो पुतली होती है, जो ट्रांसपेरेंट, जो पारदर्शक पुतली होती है, उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसमें जब सफ़ेदी आ जाए तो फिर लोगों को उसके कारण अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो वो जो सफ़ेद पुतली है उसे हटाकर जो ट्रांसपेरेंट डोनर कॉर्निया है उसे लगाया जाता है। जो मरीज़ जिनकी नस सूख गई हो या पर्दा ख़राब हो गया हो या फिर एक होते हैं दिमागी रूप से उनको दिखाई कम देता है जैसे कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, वैसे मरीजों को हम पुतली लगा के भी उनकी नज़र को हम वापस नहीं ला सकते।
2: तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और हमारे श्रोता हैं हिमाचल प्रदेश शिमला से, और हमारे श्रोता हैं राकेश। राकेश जी, क्या प्रश्न है आपका, कहिए।
3: जी जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश जी। और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे दिव्यांग व्यक्ति हैं या दृष्टि बाधित लोग हैं, क्या वो अंगदान के पात्र हो सकते हैं या उनको दे सकते या न दे सकते, ये मेरा प्रश्न है।
2: अंग दान के पात्र हो सकते हैं क्या दिव्यांग व्यक्ति, ये इनका प्रश्न है।
0: मृत्यु उपरांत तो दिव्यांग व्यक्ति हो या दृष्टिहीन व्यक्ति हो, अगर उनके जो भी अंग जो अंग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और हेल्दी पाए जाते हैं तो उनको दान किया जा सकता है। जब जीवित व्यक्ति जैसे कि कुछ अंग दान कर सकते हैं, किडनी या लिवर का हिस्सा, तो उसमें उनका मेडिकली फिट होना ज़रूरी होता है, तो और वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं जो जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है कि अगर वो मेडिकली उनको फिट समझते हैं तो ही उनका दान किया जाता है। आमतौर पे दिव्यांग व्यक्तियों के अंग, क्योंकि उनके अपने आप ही एक दिक्कत है तो उनको शायद फिटनेस नहीं मिलेगी अंग दान करने के लिए, लेकिन एज सच मृत्यु उपरांत अंग दान में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है।
2: जी, तो राकेश जी का जो सवाल था दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में, आशा है हमारे अन्य श्रोताओं को भी ये जानकारी मिल ही गई है कि वे भी कर सकते हैं, किंतु ये एक जटिल प्रक्रिया है, चूंकि वो स्वयं एक कठिनाई से गुजर चुके हैं, तो इस प्रकार जो स्पष्टीकरण दिया है डॉक्टर अनिल ने वो आप तक पहुंचा है। और डॉक्टर साहब, एक और बड़ा ही ख़ास एक ये स्थिति होती है कि अंग दान जो है, जहाँ तक बड़े शहरों की बात है, देश की राजधानियाँ हैं या जो महानगर हैं, वहाँ पर शायद ये बहुत सरलता से हो सकता है, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जो दूर दराज के गांवों में कस्बों में रहते हैं, और यदि उनकी ऐसी इच्छा हो तो वो कहाँ भला फिर वो इसके लिए संपर्क करें, इस विषय में आप हमें बताइए।
0: इसमें अंग दान के लिए एक तो हम कहते हैं कि आप रजिस्टर करवा लें, तो वो प्रक्रिया डिजिटली अवेलेबल है। नोटो की वेबसाइट पे जाके आप अंग दान एक मिनट में अपने आधार से अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करके एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है कि पेरेंट्स के डिटेल हैं, कौन से अंग और उत्तक आप दान करना चाहेंगे मृत्यु उपरांत, तो वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया मात्र एक मिनट की है। उसको आप वेबसाइट से जाके noto.mohfw.gov.in पर आप वो फॉर्म भर सकते हैं और आधार से सत्यापित ये फॉर्म होता है। दूसरा, आप हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर मैं बता देता हूँ, 1-800-114770, 1-800-114770। तो ये 24 घंटे चलने वाला नंबर है। कहीं से भी आप कोई अंग दान के लिए रजिस्टर करना चाहे या अंग दान करवाना चाहे तो ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, उसके द्वारा हमारी टीम जो इसको मैनेज करती है वो वहीं के नज़दीक के ही अस्पताल से टीम भेज कर की मृत्यु उपरांत भी अगर आप जानकारी देते हैं तो कॉर्निया डोनेशन है होता है, तो वो नज़दीक के आई बैंक से टीम जा कर के कॉर्निया का दान करवा पाएगी। लेकिन आपको जानकारी सही समय पर देनी है, समय से देनी

0: है, 6 घंटे तो मैक्सिमम टाइम हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो आपको टाइम से फोन कर देना है तो आपका ये सब हो जाएगा, चाहे आप कहीं भी दूर दराज भी एरिया में भी हो तो।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा से, और आप हैं अविनाश। अविनाश, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
2: जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार
3: नमस्कार
2: जी, मेरा सवाल यह है कि देखिए, मतलब कि जो लोग अंग दान करना चाहते हैं और उनके परिवार भी पहले राजी हो जाते हैं और अपना फॉर्म पे मतलब कि सारा कुछ फिलअप कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो उस पेशेंट की मृत्यु के बाद अगर उनके परिवार फिर से नकार जाएगा, नहीं इनका अंगदान नहीं करवाएंगे, तो फिर उस वक्त हम क्या कुछ कर सकते हैं?
3: देखिए, ऐसा है कि कोई भी अंगदान अगर होना है तो जिस इंसान की मृत्यु हो गई है तो उनके जो परिवारजन हैं, जैसे उनके बच्चे या उनके लड़के लड़कियां या उनके पोते पोतियां भी, वो उनका कंसेंट ज़रूरी होता है। अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं तो उनका अंगदान नहीं हो सकता है
1: जी। तो अविनाश, उम्मीद है आपको अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया है। और नेत्रदान के ही विषय में डॉक्टर राजेश, एक और सवाल अक्सर ये आता है कि कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं, लाइक किसी बीमारी, उम्र या अन्य कारण जिससे ग्रसित व्यक्ति, क्या ऐसा कुछ है कि वो नेत्रदान नहीं कर सकते? लेकिन आपसे हम इस प्रश्न का उत्तर लेंगे अपने श्रोता के इस प्रश्न के बाद। हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से, और आप हैं विजय कुमार साहनी। जी विजय जी, कहिए। जी प्रश्न पूछिए। हाँ, विजय जी।
4: हाँ मनीष जी।
1: जी
4: मनीष जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार
5: नमस्कार।
4: मैं विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील से, जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मेरा सवाल यह है कि मैं अंगदान करना चाहता हूँ, इसका प्रोसीजर जरा बताइए हमें।
1: अंगदान आप करना चाहते हैं और उसका प्रोसेस यानी उसकी प्रक्रिया क्या है, ये जानना चाहते हैं।
0: हाँ, तो जैसे अभी हमने बताया पहले भी कि आप ये डिजिटल माध्यम से अंगदान के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं एडवांस में ही, क्योंकि आप अभी पूरे होशोहवास में हैं, आप अपने लिए सोच सकते हैं। तो नोटो की वेबसाइट है, मैं वेबसाइट फिर बता देता हूँ, NOTTO.mohfw.gov.in, या नोटो भी लिखेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। तो आप इस वेबसाइट पे जा करके अपना रजिस्टर फॉर प्लेज को क्लिक करेंगे तो आपका वो अपना आधार नंबर डालेंगे, तो आधार नंबर के बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल में, तो आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए जो आधार से लिंक्ड है, और आधार नंबर आपको पता होना चाहिए। तो आपका घर का कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी इसको जानकारी रखता है वो कर पाएगा। एक मिनट का आपके, उसके बाद आपको अपने एक फॉर्म भरना है, उसमें अपने माता पिता का नाम और कौन से अंग वगैरह आप दान करेंगे, और इमरजेंसी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने होते हैं। आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपका ई डोनर कार्ड तुरंत आपके मोबाइल पर ही डाउनलोड कर सकते हैं, और 24 घंटे की आपको कोई हेल्प चाहिए वो हेल्पलाइन नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस हेल्पलाइन पे आप कॉल करके अंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो कॉलर पे वहाँ पे बैठा है वो आपका अंगदान तुरंत आपका रजिस्टर करवा देगा। तो इसमें लेकिन आप ये आप मान के चलिए कि अंग रजिस्टर करने के बाद भी अंगदान के लिए परिवार को बताना बहुत ज़रूरी है, परिवार में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही उनकी सहमति के बिना आपका अंगदान, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया, आपका अंगदान मृत्यु उपरांत नहीं हो पाएगा। तो परिवार को बताना, उनसे डिस्कस करना कि ये मेरी इच्छा है और ये उसमें सहयोग करें आपकी मृत्यु के उपरांत, तो वो फिर जब भी कॉल करेंगे, हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चलता है, आप उस पर कॉल करके आप ये प्रक्रिया को पूरा आपका परिवार करवा सकता है।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक

स्पीक, और आज हम बात कर रहे हैं अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा विषय पर चर्चा। और दोस्तों, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे

0: छाखरे जी। श्रीकांत जी, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
1: हेलो
0: जी। जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार श्रीकांत।
1: मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, मैं पूरे महाराष्ट्र से। तो मेरा सवाल ये है कि मेरा नेत्र का ऑपरेशन हुआ है, मेरा रेटिना का, तो उसमें मेरी जो ज्योति चली गई है आंखों की, तो इसी केस में कोई यदि डोनर मिलता है तो उससे कोई फायदा हो सकता है क्या? आई डोनेट करने वाला जो है।
0: जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे डॉक्टर राजेश। जी जी
2: जी, ऐसा है श्रीकांत जी कि आपका आपकी जो नज़र गई है वो पर्दे की खराबी के कारण गई है, और वो नज़र पुतली के खराबी के कारण नहीं गई है। और जो नेत्रदान होता है उसमें हम पुतली बदलते हैं, और यदि पुतली तभी बदलते हैं जब पीछे का पर्दा अगर हेल्दी है या फिर नस सूखी ना हो। तो क्योंकि आपका पर्दा पर्दे में खराबी है और आपकी नज़र पर्दे की खराबी के कारण गई है, तो नेत्रदान करने से उसका फ़ायदा नहीं होगा, जब बल्कि आपको किसी पर्दे के स्पेशलिस्ट के पास दिखाना चाहिए, और वो एक बार फिर से पर्दे का ऑपरेशन करके उसका इलाज करके आपकी नज़र को वापस ला सकते हैं।
0: श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस बराबर खुली हुई हैं। हमारे नंबर हैं 011-233-1048 और 23-717-117 तथा 23-717-106। लेकिन इन नंबरों से पहले भूलिए नहीं 011 अवश्य लगाइए। और व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको बता देते हैं अपना 9289094044। और हमारे एक और श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे मथुरा उत्तर प्रदेश से, चौधरी महेंद्र सिंह जी। चौधरी साहब बताइए, क्या है आपका सवाल?
3: स्टूडियो में आमंत्रित आदरणीय विशेषज्ञ महोदय नमस्कार।
2: नमस्कार
3: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से नेत्रदान करना चाहे और परिवार भी सहमत हो तो ये इन्फॉर्मेशन दानकर्ता को कहाँ देनी होगी? वो टीम घर आएगी या फिर कोई न कोई उनको खबर देनी होगी? दूसरी बात ये है सर कि मृत्यु के बाद कई घंटे तक वो रोशनी बरकरार बनी रहती है।
2: जी हाँ, एक्चुअली मृत्यु के बाद जल्दी से जल्दी नेत्रदान कर देना चाहिए। जहाँ तक समय का सवाल है, पहले 6 घंटे बड़े कीमती होते हैं, उन 6 घंटों में यदि नेत्रदान कर दिया जाए तो उसका उपयोग बहुत सही तरीके से हो सकता है। और उसके बाद भी अगर मौसम अगर ठंडा हो, अगर सर्दियों का मौसम हो, तो उसमें हम 8-10 घंटे तक भी, या फिर बॉडी को अगर बर्फ़ पर लिटाया हुआ हो, ठंडे वातावरण में रखा गया हो, तो हम आगे भी 8-10 घंटे और 12 घंटे तक भी हम नेत्र को निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक इनका पहला सवाल था वो
4: कैसे खबर करें,
2: हाँ पहला सवाल ये था कि आप खबर किस कैसे करेंगे कि यदि मृत्यु हो गई हो तो नियरेस्ट जो भी कलेक्शन सेंटर हो, आप जिस शहर में हैं उस शहर का जो कलेक्शन सेंटर है, जो भी कोई आई बैंक है वहाँ पर, तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर साहब ने जैसा नोटो का नंबर बताया था वहाँ कर सकते हैं, और एक नेशनल आई बैंक का नंबर है 9999168374। तो दिल्ली NCR में यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो ये नेशनल आई बैंक के इस नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे खुला रहता है, और उससे आप जानकारी दे सकते हैं और नेत्रदान कर सकते हैं।
0: श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आज का विषय है अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और हमारे साथ एक और श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी कहिए, क्या है आपका सवाल?
5: हाँ जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार
5: सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे ये अंगदान का जो प्रोसीजर के बारे में पूछना था, जैसे कोई एक आदमी कोई मतलब मरने से पहले जो मतलब अंगदान का जो संकल्प पत्र कुछ लिख के देता है कि मेरे मरणोपरांत मुझे ये अंगदान करना है, तो इसके बाद जो रिलेटिव का जो रोल होता है, अगर वो इसमें क्या मतलब नियम है कि रिलेटिव

0: अगर उस टाइम भी ना अगर चाहेंगे कि नहीं देना है, बॉडी नहीं देनी है अंगदान के लिए, तो ये पूछना था कि रिलेटिव का इसमें क्या रोल होता है? थैंक यू
1: जी। देखिए, रिलेटिव का रोल हमने पहले भी बताया, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप संकल्प पत्र भरने के बाद भी जो डिजिटल प्लेज आप ले लेते हैं, आप उसमें भी दो नंबर हम लोग पूछते हैं रिश्तेदारों के, उनके नंबर भी भरवाते हैं कि आपके क्लोज रिलेटिव, तो आप उनको बताएं ज़रूर कि आपने ये संकल्प पत्र लिया है और आप चाहते हैं कि आप मृत्यु के बाद आपके अंगदान हो। तो वो रिलेटिव को अगर आप सबको बता के रखेंगे, डिस्कस करेंगे, और उनके कोई अगर डाउट है तो उसको पहले से ही उनको दूर करेंगे, तो ऐसा आमतौर पे नहीं होता कि रिलेटिव ऑब्जेक्शन करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर में अगर आपने इच्छा जाहिर की है तो हम लोग सभी एक फ़र्ज समझते हैं कि हमारी एक फ़र्ज़ है कि हम आपकी उस इच्छा को पूर्ण करवाएं। ये भी परिवार के लोगों का भी यही भावना रहती है, तो आप बताएं ज़रूर। ऐसा ना हो कि किसी को पता ही ना हो कि आपने प्लेज ली थी। और आपका, जैसे मैंने पहले भी राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर बताया, मैं फिर बता देता हूँ, 1-800-11-4770, 24 घंटे नंबर खुला है। आप उस पर कॉल करके कोई भी जानकारी मृत्यु की भी दे सकते हैं और वो टीम आपको फैसिलिटेट करेंगी। जी
2: जी, हमारे एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मोहम्मद कासिम, या जिस तरह से शायद ही लिखा है, मोहम्मद कासिम जी, कहिए क्या प्रश्न है आपका?
3: जी नमस्कार।
2: जी जी नमस्कार।
3: मेरा सवाल, दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि एक बार हमें अगर दान की मदद से अंग लगे हों तो क्या हम वो अंग डोनेट कर सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो अबाउटिड क्रिप्टोफॉल्मस की बीमारी है, क्या इसमें आई डोनेशन की जा सकती है?
2: जी,
4: जहाँ तक आपने कहा क्रिप्टोफ्थैल्मस की बीमारी है, तो उसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि आँख के अंदर की स्ट्रक्चर इंटैक्ट है या नहीं है और सही है या नहीं है। तो यदि किसी को ऐसा है तो उसके नेत्रदान करने से शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो सके, क्योंकि कई बार क्रिप्टोफ्थैल्मस में पुतली भी ख़राब रहती है और उस पुतली का डोनेट करने का फ़ायदा नहीं होता है।
2: जी, शुक्रिया डॉक्टर राजेश। और हमारे एक और श्रोता मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रशीद अहमद खान जी।
5: नमस्ते सर।
2: नमस्कार। नमस्कार।
5: सभी देशवासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं सर।
4: आपको भी।
2: आपको भी
5: जी। मतलब दो छोटे छोटे सवाल, एक तो बॉडी में सर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या लिवर, तो शायद अपन लोग जीते जी कुछ पार्ट उसका डोनेट कर देते हैं, तो कितना परसेंट डोनेट कर सकते हैं अपन, प्लीज बता दीजिए
2: जी। हमारा जो देखिए आज का विषय है उससे ताल्लुक तो आपका दूसरा सवाल रखता है, लेकिन फिर भी दोनों ही सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं, और डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपकी इस शंका का समाधान करें। डॉक्टर अनिल
1: जी, जी वैसे देखा जाए तो जो सॉलिड ऑर्गन है उसमें लिवर को ही सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। वैसे जो स्किन है, टिश्यू जो पूरे बॉडी को कवर करता है, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब टिश्यू के रूप में आता है। और लीवर का कितना हिस्सा दान किया जाता है, ये डिपेंड करता है कि जो लेने वाला, जिसको लगना है, अगर वो कोई बड़ी शरीर वाला व्यक्ति है जिसको हाई बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है, तो लीवर का आमतौर पे एक पार्ट दिया जाता है। एक दो लोब होते हैं लीवर में, राइट लोब और लेफ्ट लोब, तो एक लोब आमतौर पे दिया जाता है, या तो राइट साइड का या लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट राइट का बड़ा होता है और लेफ्ट का छोटा होता है। तो लेफ्ट होता है आमतौर पे 30-40% और राइट होता है 50-70% तक। तो अगर जिसको बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है मरीज़ को, तो उसको राइट लोब लगा दिया जाता है, और जिसको छोटे वॉल्यूम से भी काम चल जाएगा, लीन एंड थिन कम वेट का रेसिपिएंट है, पेशेंट लेने वाला है, तो उसको लेफ्ट लोब लगा दिया जाता है। तो आमतौर पर एक लोब लगता है, या तो राइट या लेफ्ट लोब
2: जी। और हमारे जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हमारा जो व्हाट्स

0: व्हाट्सएप नंबर है वो है 9289094044 और आप हमारे एक्स हैंडल एट AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी हैशटैग आस्क AIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और डॉक्टर राजेश, जैसे कि आपसे मैं एक सवाल कर रहा था जो हमारे श्रोता जब हमसे बात करने लगे तो वो शायद बीच में छूट गया, कि कई बार ये शंका जाहिर करते हैं कि लोग अगर इच्छुक होने पर भी क्या वो नेत्रदान कर सकते हैं अगर उन्होंने कैटरेक्ट की सर्जरी जो है वो करा ली है या ज़्यादा नंबर का चश्मा पहनते हैं, तो उनकी इच्छा है तो क्या वो इस पुण्य कार्य में सहभागी हो सकते हैं?
1: जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद पुतली बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल कर सकते हैं। और चाहे चश्मा लगाते हों, कितना भी बड़ा नंबर हो, उससे मतलब नहीं है। पुतली स्वस्थ होनी चाहिए, कॉर्निया हेल्दी होनी चाहिए। और ये सारे लोग जिन्होंने जो भी ये इस तरह का ऑपरेशन कराया हुआ है, यदि उनकी पुतली ठीक है तो वो कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं।
0: जी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं आज हमसे जुड़े और उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान वो हुआ, लेकिन फिर भी एक बहुत अहम सवाल दिल में ये आता है कि इतना जो पुण्य कार्य करते हैं लोग जो अंगदान का, क्या उनके प्रोत्साहन के लिए भी डॉक्टर अनिल किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है?
2: भारत सरकार के जो कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय अंग कार्यक्रम, अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग उनके एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भारत सरकार की तरफ से एक राशि दी जाती है। और आजकल और उनको एक ये प्रावधान है कि उनकी बॉडी को बहुत रेस्पेक्टफुली हम लोग हैंडओवर करें, और उसमें उनके हैंडओवर करने के लिए हम लोग उसको एक शॉल या एक बुके ऑफ फ्लावर या एक सर्टिफिकेट भी दे आता है उनको अंगदान के इस नेक मुहिम के लिए आगे।
0: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और दोस्तों, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। हम अपने श्रोताओं के आभारी हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए मुझे
1: धन्यवाद
0: शर्मा को। नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
4: माननीय सभासदो, माननीय सभापति जी,
5: क्वेश्चन नंबर 226 डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
6: प्रश्न संख्या 226, क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या हैं? ख इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 2400 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है? और ग इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?
5: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
7: सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ अवर बिलोड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इंडियाज पावर सेक्टर हैज अंडरगॉन हिस्टोरिक

उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जो होता है उसके ऊपर टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए, इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी उसको पास थ्रू कैसे करोगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर इसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट, ये कैसे कम हो, इसे कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये कैसे कम हो, ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी भवन इसका कम करने के लिए टोरल के साथ साथ एग्रीकल्चर क्षेत्र के संरक्षण को भी प्रभावित करती है। हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना है पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई हुई है। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम जिसके ऊपर डाला जाएगा, और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, उसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, न पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी जिसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बनकर के और ऊर्जा के ऊपर अपने साथ जोड़नी है तो किसान को बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। धन्यवाद। ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है, और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट ट्रेड इस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट ट्रेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको लाभ किया है, तो पोस्ट ट्रेड पर आए बाकी सबको अच्छी तरह रखा गया है, तो आएगा कैसा है, स्टेट्स इसके लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं।

0: विश्व स्पोर्ट होल्डर स्पोर्ट का नाम करके दो कंसेशन के बाद फाइनल कंसेशन डिसाइड की जाएगी।
1: नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री शतरंज सिंह सांडो जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9,600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बहुत बड़ा है फिर पर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है वो तब तक पूरा हो जाएगा, और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद
2: सभापति महोदय। ये विषय चुके पंजाब के हाथों से जुड़ा हुआ है, वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती है प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रखकर के ध्यान में रखकर के बनाती है। पंजाब के लिए फाइनेंशियल फाइबिलिटी डिस्कॉम की जैसे मैंने पहले कहा ये बहुत ही अच्छी नहीं है, तो पंजाब के डिस्कॉम की फाइनेंशियल फाइबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। इसी को पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता आरईसी से पीएफसी से थी, लेकिन आरईसी पीएफसी एक ऑटोरोज बॉडी है, उनको उसकी वाइबिलिटी अपने आप देखने के कौन सा लोन उनको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहां तक पावर सिंह की डिमांड है इस डिमांड को भी समय समय पूरा करते हैं, जब भी वो मांगते हैं तो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी

0: पे डिस्कॉम दिया कि आपकी सरकार उसको आगे नहीं बढ़ती है, आगे न बढ़ने के कारण से स्टेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूति को छोड़ती नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में चीजें मिलती है, अगर खरीदने हैं तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा प्रयोग करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्विटी पाई गई, उस एम्बिग्विटी के कारण से उनका केस एप्पल में चला गया। एप्पल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्पल का 16 अगस्त को 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा उनके फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए।
1: श्रीमान विजय चंद्रकालिया जी, श्रीमान विजय चंद्रकालिया जी, चंद्रकालिया जी धन्यवाद कहना। पूर्णिमा माता ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, सो दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। First in my bloodline, I'm witnessing this green hydrogen plant in our own district. So the project envisages an investment of approximately 1.85 lakh crore, including 20 gigawatt of renewable energy capacity. And this plant will produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen derivatives. So my question here is, I want to ask the Honorable Minister, if the government is considering measures to ensure time-bound coordination between NTPC, the Central Transmission Utility and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the hub's planned capacity of future expansion.
2: Honorable Minister, Shubhakanti Bhada, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन सा प्रोजेक्ट के लिए पूछना है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो ने पूछा उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है जो दिक्कत है, मैं मानता हूं बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन्स की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टीफैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद अब आरओडब्ल्यू का जो सेक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइन कहती है। और नई गाइडलाइन मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइन जारी करने के बाद किसानों का कंपेरिजन पर्याप्त मात्रा में लग गया उनको और वहां की लाइनें चालू हो गई है। लेकिन जहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहां इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहां कहीं भी विषय कर रहे हैं वो प्रश्नों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसको कर दिया।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
3: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का, वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है, या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है, सादर प्रणाम।
2: आदरणीय मिश्रा, आदरणीय सभापति जी, ऐसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाइएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट एवर हाइएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है, और आज भी हमारी तैयारी है कि 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है, अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष में 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश

0: में अब सरप्लस कहना चाहें लेकिन पावर सफिशियंट हम अपने देश के अंदर है। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर का जो ओपन मार्केट में उपलब्ध है और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीदी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है कहीं पावर की कोई भी हमारे पास सवाल तौर पर नहीं है। प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो सब आपके
1: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आने की खबर है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील क्षेत्रों से 168,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय RS रघु। The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment, and promote manufacturing activities. She said, the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
2: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced, and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
1: The Parliament also passed the Bankers Books Evidence Bill 2026, with Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Lok Sabha Speaker Om Birla today made a personal appeal to the floor leaders to cooperate in the smooth functioning of the House and participate in the discussion on key bills. Mr. Birla stated this during the Business Advisory Committee BAC meeting held at Parliament House. He said, the people's issues cannot be left waiting in the corridors and they must be reflected, debated and resolved on the floor of this House. Speaking to reporters at the Parliament premises after the BAC meeting, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready for a detailed discussion in Parliament regarding the recent student protests and related issues. Mr. Rijiju appealed to the opposition to allow the House to function so that Union Home Minister Amit Shah can make a statement about the students' protest and address all concerns.